इष्टमित्रहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। श्रीमान भूपु पिचारी, एकबहादुर केसी जेठो छोरा, महेश्वर केसी कान्छो छोरा, तिलकराम केसी जेठी बुहारी, कमला केसी कान्छी बुहारी, लक्ष्मी केसी जेठो छोरोतर्फका नातिहरू, केशव केसी नातिनी बुहारी, एलिसा भण्डारी केसी माहिलो नाति, लोकेन्द्र केसी कान्छो नाति, गणेश केसी कान्छो छोरातर्फका नातिनी निरुता केसी, नाति भकेन्द्र केसी छोरी टिका केसी गोराथोकी ज्वाई कर्णजङ केसी, नाति नातिनी पशुपति केसी महेन्द्र केसी एवं सम्पूर्ण केसी परिवार रोल्पा नगरपालिका 2 धनबुढा रोल्पा।